0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। बोहिरा रूम में कब्रस के साहल के करीब 260 से जायद अफराद को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 20 से जायद लापता हो गए हैं। मकामी जराय इब्लाग का कहना है कि ये कश्ती शिमाली कब्रस में केरिनिया की बंदरगाह से निकलकर मुखालिफ साहिल पर तुर्की की तरफ जा रही थी, ये इतवार की दोपहर को उलट गई। समंदर में हेलीकॉप्टर्स और दीगर वसाइल की मदद से तलाश और बचाव की कार्रवाई जारी है। ज़राए इब्लाग ने हुकाम के हवाले से बताया है कि 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 23 लापता हैं। इत्तलात के मुताबिक कश्ती की बंदरगाह से रवानगी के फौरन बाद इसमें पानी भरना शुरू हो गया था। मकामी हुकाम इसके असबाब की छानबीन कर रहे हैं। आइसलैंड में लोगों ने इस्तस्वाब राय में वोट देकर यूरोपीय यूनियन में शमूलियत पर मुजाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। मकामी ज़राए इब्लाग का कहना है कि हफ्ते के रोज के इस्तस्वाब राय में डाले गए वोटों की गिनती से पता चलता है कि 52.8% इस तजवीज के खिलाफ, जबकि 47.2% इस तजवीज के हक में थे। 2024 में बनने वाली आइसलैंड की मखलूत हकूमत ने यह रेफरेंडम कराया है। मगरबी ज़राए इब्लाग ने खबर दी है कि हकूमत के इस इकदाम का एक मुहर्रिक नॉर्डिक खित्ते के इर्द गिर्द बदलता हुआ सलामती माहौल था, जहां आइसलैंड वाक़े है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने डेनमार्क के ग्रीनलैंड खुद मुख्तार इलाके पर कब्जा करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। ग्रीनलैंड भी नॉर्डिक खित्ते में वाक़े है। यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के हामी उम्मीद कर रहे थे कि अगर आइसलैंड ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार कर ली और यूरो मुतारिफ कराया तो उसकी मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। तमाम खदशात बरकरार हैं कि यूरोपीय यूनियन से इलहाक आइसलैंड की माहीगीरी की आम सनत पर पाबंदियों का बाइस बन सकता है। आइसलैंड ने अपनी मईशत की तामीर नौ की खातिर 2009 में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन इस इलहाक के बारे में मुहतात हुकूमत के इक्तदार में आने के बाद रुकनियत के मुजाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। जापान की बुलंदतरीन चोटी माउंट फूजी की हाइकिंग पगडंडी पर बेहोश पाए जाने वाले इंडोनेशियाई शख्स की मौत हो गई है। 57 साल मस्कूरा शख्स हफ्ते के रोज कोपेमाई टूर में हिस्सा ले रहा था। पुलिस का कहना है कि वो सुबह 11 बजे के करीब 5वें स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन खाने के वक्फे के बाद तयशुदा मकाम पर नहीं पहुंचा। कहा जाता है कि ये टूर उसके बगैर दोबारा शुरू हो गया। कोपेमाओ ने शाम 5 बजे के करीब 7वें स्टेशन पर हाइकिंग पगडंडी पर इस शख्स को मुंह के बल बेहोश पड़े पाया। एक पहाड़ी हट के अमले को इसकी तला दी गई और इसे 5वें स्टेशन पर लाया गया। बाद इसे फूजी कावागुची को कस्बे के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां इसे मुर्दा करार दे दिया गया। गौर किया जाता है कि इसकी मौत दिल के आर्जे से हुई है।
1: अब आज की आम खबरों की चंद सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। नेपाल में बुध के शदीद सैलाब के बाद लापता अफराद की तादाद 1.5 गुना बढ़कर 4,700 से ज्यादा हो गई है, जबकि 900 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। चीन के तिब्बत खुदमुख्तार इलाके में मुकामी हुकाम का कहना है कि एक ग्लेशियर गिरने से नेपाल और चीन की सरहद के साथ वाके इलाकों में सैलाब आया। अमरीकी अफवाज ने अपने हुर्मस के जजीरे लाराक पर 2 ईरानी रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

0: से एक है।
1: वैसे रामेन कई इकसाम के जायकों में भी दस्तयाब है।
0: जी हाँ, रामेन का सूप मुर्ग और खिंजीर की हड्डियों या सी फूड वगैरह से बनता है। जायके के लिए इसमें मिसो की फलियों का पेस्ट, नमक या सोया सॉस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते तो पहले से उसके अज्जा दरियाफ्त कर लेना बेहतर होगा। अब बाज़ दुकानों में हलाल, एलर्जी से पाक या सिर्फ सब्जियों के अज्जा से तैयार करता रामेन भी दस्तयाब हैं।
1: और अब तो रामेन के नित नए जायके भी दस्तयाब हैं।
0: जी हाँ, बावर्ची नए जायकों की तैयारी जारी रखते हैं। मसलन अब पनीर और गाढ़ी क्रीम के जायके बनाए गए हैं। कई इलाकों में वहाँ के मखसूस अंदाज के रामेन भी हैं। मकामी खानों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद जहाँ भी जाते हैं वहाँ के मकामी जायकों से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।